उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ

ताली ताक जुम्मे ताक ताली ताक जुम्मे ताक झाला आंबो ताक जुगे ताक ताजे के नेतू ताक नाक ताक जुम्मे ताक नाक नाक जुम्मे ताक नाक नाक जुम्मे ताक नाक नाक जम ताली ता जग ताली ता जाने जाने को कुदारी ता कुदारी के ने ताक ताली ता जग ताली ता जाने जाने को कुदारी ता कुदारी के ने जम ताली

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: अब तो हमको है तुमसे प्यार।
1: दो पिए थे दो टोके आज,
0: कर लो याद तुम प्रेम का पार।
1: दो पंजे दस दो छक्के बारह,
0: चमका चमका तकदीर का तारा।
1: दो छक्के चौदह और दो छक्के सोलह,
0: मैं हूँ आज और तू है शोला।
2: तेरे बिना

0: तेरे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

हरियाणवी से आप सुने सुपर हिट सॉन्ग तेरी अखिया का जो काजल मुझे तरपावे। मॉय उजाला रेडियो पर आप सुने हैं इस गीत को। एंड न्यू मरहूम नदीम खान जी

और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अभी आप गीत को सुने मरहूम नदीम खान साहब की आवाज में उजाला रेडियो पर। और अब किरण केदार। मैं दिल था अकेला।

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते हैं, ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

हमारा साथ जो आप यहाँ तक दिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बहुत जल्दी यहीं फिर मिलेंगे।

Ed Sheeran en Diljit Dosanjh के आवाज में भी आपने सुने सुनो और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं. वरना दिस फेन कॉफी चाय मिडनाइट शो पूरा हम लोग नहीं करने वाले हैं. मिशन मॉर्गन एल्स मॉर्गन इज दैन इज सेकर फ्राइडे फॉर ऑल द टोरीज मुच ऑफ उजाला रेडियो अफस्टर एंड फॉर ऑल नाउ कॉफी चाय मिडनाइट शो मैं हूं लॉयड महाबीर. Of je nu aan het werk bent, onderweg bent of geniet van een rustige lunch, neem vandaag even de tijd voor de mensen die belangrijk voor je zijn. Mooi serie, een prachtige middag toegewenst en blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi serie. Apne aapko khayal rakhna. Aur apne parivar ke khayal rakhna.

Ed Sheeran en Diljit Dosanjh के आवाज में भी आपने सुने सुनो और इसी के साथ हम आपसे इस आदेश चाहते हैं फनाख दुस फेन कॉफी चाय मिडनाइट शो पूरा हम लोग नहीं करने वाले हैं मिशन मॉर्गन एल्स मॉर्गन इज दैन इज सेकर फ्राइडे फॉर ऑल द टोरीज मुच ऑफ उजाला रेडियो आफ्टरनून एंड फॉर ऑल नाउ कॉफी चाय मिडनाइट शो मैं हूं लॉयड महाबी ऑफ यू नू ऑन द वर्क बेंच onderweg bent of geniet van een rustige lunch, neem vandaag even de tijd voor de mensen die belangrijk voor je zijn. Mooi serie, een prachtige middag toegewenst en blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi serie. Apne aapko khayal rakhna. Aur apne parivar ke khayal rakhna.

0: तेरी कसम।
1: और कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा। लता जी के साथ अमित कुमार से गीत को आप सुने, फिल्म लव स्टोरी से निकाला हुआ उजाला रेडियो पर।

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनिके स्टेमें इन एन अनवर्गेटलिके शो 19 सितंबर थिएटर द मेरवाड में मौसमी ओब्रॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयका दत्तजीन एंड निजाम वागी दुसैन के साथ कॉपी टिकट्स ऑब्टेन्ड विया मेरवाड.nl

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

6:06 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। यू आर के स्टूडियो रोटरडम से एकदम लाइव एंड डायरेक्ट। आज ये बुधवार 24 तारीख जून का जो दिन है, रात्रि का ये प्रोग्राम हम सजाने आए हैं। बैक टू द फ्यूचर फिर एक बार रात्रि में 9 बजे तक आपका सेवा हम करेंगे लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब है। शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए और तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, स्वागतम स्वागतम। इस महीने जून का आखिरी बुधवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, और आज इस आखिरी बुधवार 24 तारीख जून को हम आज भी आखिरी प्रोग्राम सजाएंगे देवानंद साहब जी का, क्योंकि इनकी मूवी से आज का ये प्लेलिस्ट जो हमने सजा रखा है, खूबसूरत नगमाएं फिर एक बार जो इन पर पिक्चराइज किया गया है, और जो हसीन हसीन पुरान यादें हैं बीते दिनों का सेवा में हम पेश करने वाले हैं फिर एक बार, और इसका आखिरी प्रोग्राम है। उम्मीद तो आशा करते हैं कि जिस तरह से आप सभी ने अगले प्रोग्रामों को पसंद किया है, नगमाओं के साथ काफी मजा ली है, आज भी आप भरपूर मजा लेंगे। ओपनिंग सिलेक्शन पेश करने से पहले मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम तो है लेकिन फिर भी कह देता हूं कि हमारे प्रोग्राम हमेशा हमारे प्रोग्राम के दौरान व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं मुझसे। 9203639000 यू आर स्टूडियो का व्हाट्सएप है। 02-03-6-3-08-08 आप ऐप करें, जवाब ही मिलेगा और वहां पर भी कुछ बातें हो सकते हैं, और बातें ऐसे ना हो दफ्तर की बातें तो ठीक, क्योंकि दफ्तर की बातें जैसे कि आपके फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, तो आप स्टूडियो को मत ऐप कीजिएगा, मार आप या तो मेल करें दफ्तर को या तो आप तार करें दफ्तर को। तार आप कर सकते हो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे, और वो भी तार का नंबर जो है दफ्तर का 02-04-09-07-02-04-09-07, या तो लगातार 24 घंटे 7 दिन आप अपना कामकाज, फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी आप इंफॉर्मेशन करवाना या जानकारी आप प्राप्त करना चाहोगे या काम करवाना चाहोगे, आप मेल करें info@ujala.nl। धर्मदेव पशोड़ी मल आनंद, जिसका पैदाइश 26 सितंबर 1923 का हुए है, सितंबर, और हमें दूर छोड़कर चले गए अपने सारी यादें, मूवीज में खूबसूरत गाने। 3 दिसंबर साल 2011 में जो ये साल 15 साल को होने को आएंगे, और उस वक्त जब ये दुनिया को छोड़ चले थे, वो भी इंग्लैंड लंदन में ये 78 साल के उम्र में परलोक सिधार गया था, 88 साल। तो मेरे प्यारे सुनो वालों, और जानकारी इनके बारे में बहुत सारे इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, देवानंद जी इनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा गया है, खान केयर गूगल सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। आज का ओपनिंग सिलेक्शन हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है देश परदेश, और ये फिल्म निहती नख्तन सीव तक का है मेरे प्यारे सुनने वालों। एक गीत अमित खन्ना जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार राजेश रोशन, किशोर कुमार, अमित कुमार, मनहर उदास को हम पेश करते हैं। एक शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए, Enjoy Back to the Future on your favorite station, Ujala Radio.

नजर लगे ना साथियों आज भरी महफिल में, तो न जाए ये दिल इन गोरी गोरी बाहों का जो मेम है। मस्ती भरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार, अमित कुमार, मनहर उदास और साथियों ने मिलकर गीत गाए अमित खन्ना का लिखा हुआ, और वो भी राजेश रोशन के साज और संगीत पर। देश प्रदेश फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, ये एक फिल्म निहति नख्तन सीवंत का है। देवानंद साहब जी इन्होंने प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट किया है। देखता हूं प्रेम चोपड़ा भी है, प्राण साहब जी, टीना मुनीम जी को इंट्रोड्यूस किया है, अजीत साहब जी, अमजद खान, बिंदु टोमेल्टर, डॉक्टर श्री राम लागू, भरत कपूर, सुचित कुमार, इंद्रानी मुखर्जी, एन चुलक, महमूद साहब जी पैंटल, ए के हंगल, बीरबल, यंकी दास, राज मेहरा। उजाला रेडियो है ये, फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे सिनेमालो इस बैना नीह तीन मिनट ओवर सिस। रात हो गया ऐसा तो नहीं दिखता है, क्योंकि भैया कड़क धूप है, बहुत गर्मी छाए हुए हुए है और हित प्लान चालू है, तो आप नतुलक फुलदुंड आप को पीना चाहिए, पानी, लिमोनाड, टी, कॉफी, लेकिन आप पीजिएगा और आप अपना घर को फुरा लोग दराम देख ला तनी इतना बेना वहा है, तू जाने तो गर्म लोखा है भीतर, तो वो भी आफत है, खुरदय में देख ला दसो नी बेन को हावत हाई स्कूल और लेखाम को अगर कूल भी करना चाहोगे तो शादियों में नतुलक आप बैठे और प्रोबेर बोथ खप फ्रूख फोर्थ वाला फ्यूटर दो ऑफ ना सेस्यूर। आजकल तो दुकान सुबह 7 बजे खुल जाते हैं और ना जाने 10 बजे तक आप सुपरमार्केट जा सकते हैं, और घरे अगर आप बैठोगे तो फुट बाचे में ठंडा पानी में आप अपना पैर रख सकते हो, दत्त सोर हुक नतुलक फॉर कूलिंग। और जहां किसी प्रकार का दौसलक है, धूप पैन, फरमुइट है या हेल एड़ख प्यास जब आपको लगेगा और आप एक्स्ट्रा पी रहे हो, सभी कुछ कर रहे हो फॉर कूलिंग करने के लिए लेकिन फिर भी हो नहीं रहा, तो बेल ऑल्स टू ब्रीफ मेथेन दौसलक, तू जाने तो। और कभी कभी दवाइयाँ जो हम पी रहे हैं रोजाना, उनके जरिए से भी दी जो है परहित हो सकते हैं, तो संभाल के लेट एयर ऑल्सो ब्लीव अप मेरे प्यारे सुनने वालों। इस गर्मी का जो मौसम है, ना सिर्फ अपने आप को लेकिन एक दूजे को भी हमें देखना है, बुजुर्गों जो लोग लाचार है, बीमार है, उन्हें बैल कर तार कीजिएगा या तो आप उन्हें उनके पास जाइएगा, शायद उनको आपका मदद जरूरत पड़े और वो खुद नहीं कर सकता है घर में। दत मुतुलियोग नीत फरगीत प्रोबेर दत दून लातो दत में तलकार दून, ऐसा हमें सिखाया गया है कि एक दूजे के काम में आना चाहिए और संग संग मिलकर हम ये जो गर्मी का मौसम है भी हम झेल लेंगे। गर्मी हमें चाहिए लेकिन इस तरह का गर्मी का नतुलक साद फरिख्त। ठीक है, बहुत हो गया डॉक्टर रतन का बातचीत, आपको ले चलते हैं मूवी की ओर जिसका नाम है असली नकली। मेरे प्यारे सुनने वालों, असली नकली मूवी 1963 का है, निहत इंद्रियन सेस्तख और देवानंद साहब जी जिनका आज हम फाइनल एडिशन पेश कर रहे हैं बैक टू द फ्यूचर में, और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। तो देवानंद साहब जी का ये फिल्म हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत निकालेंगे और जो मिलकर गाएंगे शंकर और जयकिशन की साज और संगीत पर, द क्वीन लता जी और मेलोडी किंग रफी साहब जी, ये नगमा

0: तुझे जीवन की दौड़ से बांध लिया है। रफी साहब जी और लता जी की खूबसूरत आवाजों में ये रोमांटिक सॉन्ग जो हसरत जयपुरी जी ने लिखा, इन दोनों ने मिलकर गाए हैं शंकर और जय किशन के साज और संगीत पर। 1963 नेहतिंद्रियन सेस्तख का मूवी असली नकली से हमने नगमा को निकाले। ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्ट क्या हुआ मूवी, देव साहब जी और द ब्यूटीफुल साधना का एक फिल्म जिसमें मुकरी भी है, लीला चिटनिस, नाजिर हुसैन, संध्या रॉय, अनवर हुसैन, कैस्टो मुखर्जी। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो वालों, हम फिर वापस चलेंगे द 70s की ओर। 1974 का एक फिल्म जिसका नाम है इश्क इश्क इश्क, तीन बार इश्क। और ये फिल्म का एक खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग, मूवी का टाइटल सॉन्ग भी है, पेश करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत है जो राहुल डे बर्मन, आर डी बर्मन की साज और संगीत पर मिलकर गाएंगे हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। इश्क जमाने में जो करते हैं,
1: इश्क इश्क इश्क जमाने

इश्क जमाने में जो करते हैं न जीते मरते हैं, आशिक वो नहीं बन सकता जो डरते हैं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। और हम डर डर के और या मर मर के क्यों जिए, जी जी के हम अगर मरे तो और बात होंगे ना। ये था नाइटिंगेल आशा जी और किशोर कुमार की आवाजें। इनकी खूबसूरत आवाजों में गीत आप सभी ने सुना है आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की साज और संगीत पर। मूवी का टाइटल सॉन्ग 1974 का फिल्म इश्क इश्क इश्क का नगमा। ये फिल्म भी मेरे प्यारे सुनने वालों देवानंद साहब जी ने प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट किया है। द ब्यूटीफुल सीना तमान के साथ प्रेमनाथ इफ्तखार, शबाना आजमी, कबीर बेदी, सरीना वहब, जीवन साहब जी, ए के हंगल, कुमिला वर्क, नादिरा बिरबल, यंकी दास, त्रिलोक कपूर, सुधीर। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन है ये मेरे प्यारे सुनने वालों उजाला रेडियो लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। फिर एक बार क्योंकि बुधवार है सजा रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और बैक टू द फ्यूचर मेरे प्यारे सुनने वालों 6 बजे हमने आराम की है, रात्रि में हमेशा की तरह 9 बजे सेवा हम करेंगे। घड़ी की तरफ अगर मैं देखूं तो अतिस बहना 3 मिनट ओवर द क्लॉक फॉर हाफ सेवा। और हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर। वापस हम जाएंगे द 60s में और वो भी 1963। और जहां तक मेरा ख्याल है फिल्म का टाइटल सॉन्ग ये भी है, हसरत जयपुरी जी इनका लिखा हुआ गीत। लता जी और रफी साहब जी को फिर एक बार हम पेश करेंगे प्रोग्राम में और वो भी एस देव बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। तेरे घर के सामने फिल्म 1963 का टाइटल सॉन्ग ये दोनों मिलकर गाएंगे।

घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने और अपना ये दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। लता जी और रफी साहब जी की खूबसूरत आवाजों में खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी इनका लिखा हुआ सेवा में हमने आप तक पेश किया है। संगीतकार एस दे बर्मन सचिन देव बर्मन 1963 नीहत इंद्रियन सेसक का फिल्म तेरे घर के सामने से हमने नगमा को निकाले। ये फिल्म का प्रोड्यूसर और एक्टर एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी है, डायरेक्टर गोल्डी आनंद इनके छोटे भाई विजय आनंद है, न्यूटन के साथ मूवी में काम किया है और इन दोनों के अलावा ओम प्रकाश, यंकी दास, राजेंद्र नाथ, मुमताज बेगम, प्रतिमा देवी, रशीद खान और परवीन चौधरी। इस गीत के बाद 10 साल फिर एक बार वापस ऊपर हम चढ़ेंगे और जाकर पहुंचेंगे 1973 मेरे प्यारे सिनेमा निहत इंद्रियन सेफ। फिल्म का नाम बनारसी बाबू और ये फिल्म का एक खूबसूरत प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूँ। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ कल्याण जी अनान जी पेश करता हूँ। ईरान यू आर बैक टू द फ्यूचर में मेरे प्यारे सिनेमा वालों।

जी मेरे पीछे एक लड़की, एक लड़की पगली सी, आवारा तितली सी, झूम रही है, झूम रही है, दिल दे दूं उसको मैं कैसे। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार, ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, इन्होंने गाकर सुनाए हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसमें काफी छेड़छाड़ थे, लेकिन छेड़छाड़ में प्यार भी होता है बहुत। रजिंद्र कृष्ण जी इनका लिखा हुआ खूबसूरत गीत विद ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ कल्याण जी अनान जी, किशोर कुमार ने ये गीत गाकर सुनाए। बनारसी बाबू फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिनेमा, और ये फिल्म 1978 का है। निहत इंद्रियन सीवंत शंकर मुखर्जी इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद का डबल रोल, और राखी गुलजार भी है फिल्म में, जुगीता बाली जीवन साहब जी। मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि हर एक घंटे पर आप सुनेंगे इश्तिहारे, देश विदेश का समाचार, मौसम का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है, और अफसोस के साथ भी ये कहना भी हमें पड़ता है कि उजाला रेडियो के जरिए भी 60 बजे इश्तिहारों के बाद थोड़ा सा मृत्यु समाचार है, मौत की खबरें जो पुकारा जाएगा, पढ़ा जाएगा हियर ऑन यू आर। बरिख्त फन ओवरलेड हिलास ना द सोशल ब्रेक फन सेवर हियर ऑन यू आर, और उसके बाद सो रोंट 13 ओवर सेव, आप सभी के खिदमत में हम फिर वापस आएंगे लेकर देवानंद साहब जी के और भी दिलचस्प इनकी खूबसूरत गाने। मेरे प्यारे सुनो, ले चलता हूं अगले गीत की ओर, हम आपको फिर एक बार वापस ले चलेंगे वक्त में, और 1961 निहति नैनन सेस्तक, या अभी तक मेरा पैदाइश नहीं हुआ था, एक वस्तु नोख नी खबूर नोख लांग नीत, लेकिन फिर भी हमें नगमाएं पसंद है। नटुलक फ्रॉम द 50s, द 40s का भी कुछ गाने मुझे पसंद है, एक बेन हिल ब्रीड क्वा म्यूजिक एक्टवा, एक रोमांटिक सॉन्ग फिर एक बार, मजरू सुल्तानपुरी जी अब की बार इनका लिखा हुआ गीत, लता जी और रफी साहब जी मिलकर गाएंगे, सलील चौधरी के साज और संगीत पर, फिल्म का नाम है माया, और माया 1961 का फिल्म है, निहति नैनन सेस्तक की तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, पेश करता हूं।

तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उठारी है। लता जी और रफी साहब जी की खूबसूरत आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ गीत, दोनों ने मिलकर गाए हैं। सलील चौधरी की साझा और संगीत पर। माया फिल्म का नाम, माया 1961 का मूवी है, नीहती नैनन सिस, और ये फिल्म डॉक्टर केशव जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी है, जिसमें एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी ने काम किया है द लवली माला सिन्हा जी के साथ। जयंत सुंदर आगा साहब जी, ललिता पावर हेलन ने भी काम किए हैं। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो एक छलान लगाएंगे 12 बरिस का एनन को अपनी 1973, एक खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, आर डी बर्मन की साज और संगीत पर, फ्रॉम द मूवी शरीफ बटमाश।

नींद चुरा के रातों में और तुमने बस बातों ही बातों में। या खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों जो सेवा में पेश किया गया है किशोर कुमार और नटुलक नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, दोनों ने ये गीत मिलकर गाए हैं। एर डी बर्मन की साज और संगीत पर शरीफ बदमाश फिल्म का नाम 1973। प्रोड्यूसर एक्टर देवानंद साहब जी, राज खोसला ने डायरेक्ट किया है और हिरनी जैसी आंखें वाली द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ ये फिल्म बनाया गया है। इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनो, इस आखिरी गीत के बाद 7 बजे की इश्तिहारी और इश्तिहारों के बाद जैसे मैंने कहा अफसोस के साथ भी उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार मौत की खबरें भी प्रोग्राम में पुकारा जाएगा। एना मैंने करदारना रोन 13 मिनट ओवर सेव वापस लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। जाली नोट से निकालेंगे नगमा राजा मेहंदी अली खां का लिखा हुआ गीत और जिसका संगीतकार है ओपन नैयर। जाली नोट एक फिल्म है 1907 का। नीहतीन सिस्टर।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। पेरमरन से माँ रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनजस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम आनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु आएमसी हॉस्पिटल अम्स्टरडम में हो गई है। परमानंद से माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनजस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के आएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शुक्रवार की रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक फ्रेदाफन फंसूर तथा लफ देला अवरीना के मुर्दालय होर्न बुख इन अम्स्टरडम जैतोस में। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनिस घर घराना में यानी कि बसलोतन क्रिंग में आने वाले सोमवार को किए जाएंगे। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 46 84 64 06 46 84 64 64। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार पाटन दिन और परिवार मारापिन के दुख में शामिल है।

हे मैंने कसम ली और तूने भी कसम ली कि नहीं होंगे जुदा हम। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, नीरज जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं। एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर तेरे मेरे सपने फिल्म का नाम 1971 का नेहति नेनन सेवंत। देवानंद प्रोड्यूसर और एक्टर और मूवी का डायरेक्टर इनका छोटा भाई विजय आनंद, गोल्डी आनंद है। मुमताज के साथ ये गीत पिक्चराइज किया गया है मूवी में, साथ भी है ये फिल्म में हेमा मालिनी, विजय आनंद, आगा साहब जी, सापरू साहब जी, जय श्री ती, लीला मिश्रा भी है और देखूं तो तबसुम बेबी तबसुम प्रेमनाथ भी, महेश पवाल भी है, उमा दत्त दुलारी साहब जी, मुमताज बेगम। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, बुधवार की रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। बैक टू द फ्यूचर, घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 19 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 60 बजकर 3 मिनट ओवर सेव। ये है उजाला रेडियो लाइफ एंड आर है QR के स्टूडियो रोटरडाम से। बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं। आज इस आखिरी बुधवार, ये महीना जून का, हम आखिरी भी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का। इनके मूवीज से गीत जो इन पर पिक्चराइज किया गया है, निकाल कर प्लेलिस्ट को हर एक हफ्ता हमने सजाए हैं आज भी, और प्लेलिस्ट से बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ निकाल कर आप तक हम पेश कर रहे हैं। स्वागरी राज दर्शन भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं अमस्टरडम में, आनंद भी ले रहे हैं अमस्टरडम सेंट्रम में प्रभाजी डंकीवेल। स्वागरी राज दर्शन जी और प्रभाजी अमस्टरडम सेंट्रम, डंकीवेल भी हम कहेंगे धन्यवाद। शारदा अटारनेम, आप ही आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। बेटी जी खरोनिंग, बेटी जी हाँ, स्टूडियो में एयरको होना जरूरी है, ना सिर्फ बाहर की गर्मी यहाँ छा रहे हैं लेकिन गर्मी भी फंड अपर्टूर, आपको मालूम होना चाहिए ये भी गर्म किए देता है, तो एयरको चालू है। और मैं मगन के साथ, बहुत ही आनंद के साथ ले रहा हूँ भी ये प्रोग्राम का मजा। सुशीला चंद्रिका सिंह जी आइट आमसलफेन, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद भी हम कहेंगे मार्सब्रुक का हेड एंड्रू जी और चित्रा जी, जो भी आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ। दूर वहां डबी कैपल में, यही शायद वेका भी हो रहे हैं मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में, तो डबी कैपल न्यूयॉर्क सिटी से कविता, हाँ जी कविता जी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। फुल ऑन उजाला रेडियो, थैंक यू वेल कविता आपके ऐप के लिए। आप उजाला रेडियो को सुन रहे हैं तो आप पगली नहीं है, बहुत समझदार है आप कविता जी। जो लोग समझदार है उजाला रेडियो पर चून किए करते हैं, जैसे कि मिक अदना, थैंक यू वेल मिक ओक फोर ये एपियर, मिक जी भी आनंद ले रहे हैं दनहाग शहर में और अमस्टरडम शहर में भी आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ। आईफी जहांगीर, थैंक यू वेल आईफी फॉर योर ऑलवेज सपोर्ट, थैंक यू वेल आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से हम प्रोग्राम सजाएंगे ये हफ्ते और आने वाले दिनों, हम आपको एक गीत के बाद बताएंगे जरूर। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे एक और पॉपुलर सॉन्ग जो देवानंद साहब जी और आशा परेख पर पिक्चराइज किया गया था, एक गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार शंकर और जयकिशन।
लता जी और रवि साहब जी जो गीत गाएंगे फ्रॉम द मूवी जब प्यार किसी से होता है, एक फिल्म 1961 का निहतिने ननसेस। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और ये प्यार कल भी रहेगा।

सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हाँ जी मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लता जी और रफी साहब जी की खूबसूरत आवाजों में ये रोमांटिक सॉन्ग हसर जयपुरी जी का लिखा हुआ, शंकर और जय किशन की साज और संगीत पर दोनों ने ये गीत मिलकर गाए हैं। जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है, 1961 का फिल्म है, निहति नैनन सस्तख, मेरे प्यारे सिनेमा लोग, नाजिर हुसैन का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, और देव साहब जी और आशा पारेख का एक फिल्म जिसमें प्राण साहब जी भी है, सुलक्षणा, राजेंद्र नाथ, राज मेहरा और बहुत सारे और लोग

जैसे मैंने कहा, एक गीत के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रोग्राम सजाएंगे हियर ऑन यू आर। फिलहाल तो आने वाले चार हफ्ते जो हैं, हर एक बुधवार और बृहस्पतिवार एल्क वून सखाफंत एंड दोनों रखाफंत हम बनाएंगे सजाएंगे प्रोग्राम अब दूंसा बैक टू द फ्यूचर एंड ऑफ द दोनों रखाफंत दिल की आवाज। उसमें सिर्फ वक्त का बदली हो सकते हैं लेकिन एक बैनर सुविसो। और रहे शनिवार के बाद, तो आने वाले शनिवार 27 तारीख जून जो इस महीने का आखिरी शनिवार है, आपका सेवा हम करने चले आएंगे। और अगले हफ्ते जो नए महीना जुलाई का पहला शनिवार है 4 तारीख भी आपका सेवा ऑफ द सात रखाफन करने चले आएंगे। एंडारना kan ik niet meer op de zaterdagavond vanwege verplichtingen en ook een beetje vakantie. Jo, bhi honge and juli se. To mere pyare suno, jis tarah se hum program sajayenge, aapse humne kaha hai ki de komende 4 weken elke woensdag aur donderdag hum sajayenge banayenge program Back to the Future aur Dil Ki Awaaz. Aur hai shanivar ke baad, to aane wale shanivar En volgende week, zaterdag, aapke seva mein khidmat mein hum hazir rahenge. En daarna, voor een tijdje, zal ik er niet meer zijn op de zaterdagavond. To le chalte hai agle geet ki or, mere pyare suno walo. We gaan van 19, wat was het, 61 gaan we naar 1973. Film ka naam Joe Sheila, aur film Unisautihattar ka hai, 1973. एक गीत हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ है और किशोर कुमार और लता जी गीत मिलकर गाएंगे। आर डी बर्मन की साज और संगीत पर, राहुल बर्मन की साज और संगीत पर एक प्यार भरा गीत जिसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ है, रोठना मनाना तू जाने तो कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरा ही होना होगा। फ्रॉम द मूवी जोशीला पेश करता हूँ।

कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। हसीन के पुजारी किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, हमारे प्रिय सहिल और जाह्नवी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग, लेकिन बहुत सारा छेड़छाड़ और उठना मनाना था इस गीत में। संगीतकार आर डी बर्मन, राहुल बर्मन, मेरे प्यारे सिने वालों, फिल्म का नाम जोशीला। ये फिल्म 1973 का है, नेहा तिंद्रियन सी, मतलब यश चोपड़ा जी का डायरेक्ट क्या हुआ, और देवानंद हेमा मालिनी, राखी पद्मा खन्ना, मनमोहन कृष्ण, रूपेश कुमार, प्राण साहेब जी, बिंदु, महेंद्र संधू, आयुष जोहर, मदन पुरी, लक्ष्मी छाया, ए के हंगल, इफ्तखार, जगदीश राज, सुलक्षणा और सुधीर का एक फिल्म। 5 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 7 बजकर या हाल्फ 5 मिनट ओवर द क्लॉक फ्रॉम हाल्फ आख लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं। मोरखनाफन धन बैनेकर में दिल की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, रात्रि में 8 बजे से 11 बजे आपका सेवा हम करेंगे, लेकर सुंदर सा प्रोग्राम दिल की आवाज विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स। तो मेरा साथ उम्मीद और आशा करते हैं आज की तरह कल भी आप साथ देंगे। वापस ले चलेंगे आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों 1961 के ओर, नेहा तिंद्रियन सिस्टर, फिल्म का नाम हम दोनों, और एक और गीत हमारे प्रिय सहिल और जाह्नवी जी का लिखा हुआ आप सुनने को जाएंगे रफी साहब जी की आवाज में, और जिसका संगीतकार है जयदेव। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हाँ मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, गीत पेश करता हूं हीरो निवाड़।

मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। गलजन पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी इनका लिखा हुआ गीत रवि साहब जी ने गाकर सुनाए हैं जयदेव की साज और संगीत पर। 1961 नेहदी नैनन सेसा का फिल्म हम दोनों से हमने नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर अमरजीत और प्रोड्यूसर और एक्टर देव आनंद साहब जी, इन्होंने ये मूवी में काम किया है नंदा के साथ, साधना भी है, ललिता पौर, जागीरदार, रशीद खान, लीला चिटनिस, जगदीश राज। ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं श्रीराम रतनम का प्रिंसेस राज, डंकी वाला आपके ऐप के लिए, एंड हिल फिल्स डायरेक्टर आइलिन जी आइट हार्लेम को भी हम दंकीवाल कहेंगे धन्यवाद चून करने के लिए। और आनंद भी ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ आमस्टरडाम का भैया सुनील, दंकीवाल सुनील हमेशा सुनील जब भी सुनता है ऐप करते हैं, पावर करते हैं, तो आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत की ओर नीरज का लिखा हुआ हम आपको ले चलेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1971 रोमांटिक सॉन्ग जो मिलकर गाएंगे एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और मेलोडी क्वीन लता जी। फिल्म का नाम गैम्बलर मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत का बोल कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है।

चूरी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो ये तूते ना। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, पॉपुलर सॉन्ग ये था नीरज का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार, एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर मेरे प्यारे सुनने वालों। और फिल्म का नाम गैम्बलर, गैम्बलर 1971 का फिल्म है। नीहति नैनन सेवंत अमरजीत ने प्रोड्यूस और जो डायरेक्ट किया है। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहिरा शॉटगन सुधर हंसीना साहिदा सापरू साहेब जी किशोर साहू सुधीर इफ्तखार मुमताज बेगम बीबी तबसुम जीवन साहेब जी मनोरमा सचिन पिलगांवकर जगदीश राज रशीद खान बिरबल इन सभी का एक फिल्म है। तो मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि कल रात्रि को 25 तारीख जून को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज। यही स्टूडियो रतनाम से प्रोग्राम हम सजाएंगे लाइव एंड डायरेक्ट 3 घंटे लगातार आप सभी के लिए। एन 7 रख आने वाले शनिवार 27 जून मेरे प्यारे सुनने वालों 27 तारीख जून को सैटरडे नाइट फीवर पेश करेंगे रात्रि में 7 बजे से 12 बजे 5 घंटे आप सभी का सेवा हम करेंगे विद ब्यूटीफुल नए जितने भी निकल आए हैं लोकल्स और उनके साथ साथ कुछ पुराने भी शामिल रहेंगे। तो अवश्य यू मीट और आशा के साथ प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे कि आप मेरा साथ देंगे और काफी आनंद लेंगे उन प्रोग्रामों के साथ। गैम्बलर के बाद मेरे प्यारे सुनवालों खाव तुरख ना 1960 फिल्म का नाम बंबई का बाबू। बंबई का बाबू एक मस्ती भरी गीत फिल्म से निकालेंगे, एक गीत जो मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा और जो मिलकर गाएंगे सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर नाइटिंगेल हाशा जी और रफी साहब ये नगमा।

0: हुआ दिल जाने कहां होके बाहर आई। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, नाइटिंगेल आशा जी और रफी साहब जी की आवाजों में गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ आप सभी ने सुने हैं। संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन, और फिल्म का नाम बंबई का बाबू, 1907 का फिल्म है। 1960 तो राज खोसला जी इनका प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें देवानंद ने काम किया है सुचित्र सेन के साथ, नाजीर हुसैन भी है, रशीद खान, अंशिला सखदेव, जगदीश राज, जीवन साहब जी और धूमल। एनएनसी एक दातिक लास्ट नंबर इस घंटे का पेश करेंगे और इस आखिरी गीत के बाद ब्रेक की ओर हम बढ़ चलेंगे। आखिरी गीत इस घंटे का मेरे प्यारे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी 1970 का मूवी है। 1970 आप सुनेंगे एक नगमा लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में, एक गीत जो नीरज ने लिखा और वंस अगेन संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। ये फिल्म प्रेम पुजारी 1970 देवानंद साहब जी ने प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट किया है, वहीदा रहमान के साथ, शहीदा, सचिन पिलगांवकर, प्रेम चोपड़ा। इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सुनो, ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर जरूर से जरूर हम मिलेंगे।
1: आ जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तफाक है। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की खूबसूरत आवाजों में रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ आप सभी ने सुने हैं। संगीतकार शंकर और जय किशन, फिल्म दुनिया से हमने नगमा को निकाले हैं। दुनिया फिल्म 1969 का है, नीहती नीहनन ससख और खूबसूरत गीत। ये मूवी का जो हमने निकाले हैं, मैं देखता हूँ मूवी का डायरेक्टर प्रकाश राव जी, प्रकाश राव और देवानंद साहब जी ने ये मूवी में काम किया है। विजयंती माला के साथ प्रेम चोपड़ा, बलराज सानी, जॉनी वॉकर, मदनपुरी, ललिता पावर। उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं मेरे प्यारे सिनेवालो और लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज आखिरी बुधवार है महीना जून का 24 तारीख और इस आखिरी बुधवार को भी आखिरी प्रोग्राम हम सजा रहे हैं द ग्रेट एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का। कुछ हफ्ते हमने आपका दिल बहलाए हैं इनके गानों के साथ, नगमाएं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है इनकी मूवीज में। आज आखिरी प्रोग्राम सजा रहे हैं। अगले हफ्ते जो नए महीना जुलाई का पहला है, एक और मशहूर महान कलाकार का प्रोग्राम सजाएंगे। अच्छा, 13 मिनट ओवर अख मेरे प्यारे सुनने वालों, 13 मिनट गुजर चुके हैं 8:09 बजे तक आपका साथ हम देंगे लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से, यहां से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, हमेशा पहला पहला प्यार आंखों से ही होता है। तो ये गीत जो जान निसार अख्तर जी ने लिखा, मिलकर गाएंगे गीता दत्त और डलेजन पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी, वो भी ओपी नैयर के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम CID और ये फिल्म ओ बॉय ओ बॉय 1956 का है, नीहतीन सेशन 5।

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। रफी साहब जी की आवाज साथ दे रहे थे गीता दत्त जी। जान निसार अख्तर जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग्स अबाउट आइस, आंखों पर लिखा गया ये रोमांटिक सॉन्ग प्यार भरा नगमा, और जिसका संगीतकार थे ओपेन नायर। सीआईडी फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, और फिल्म सीआईडी 1956 का एक मूवी है, 1956। राज खोसला फिल्म का डायरेक्टर और एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद ने काम किया है वाहिदा रहमान के साथ, शकीला, कुमकुम, केन सिंह और शीला फास। इफोन दौलत डनहाक डंकीवेल आपके एप के लिए एन हेल्पफुल सक्सेस मैथ फरहज। और मैं देखता हूं सूरीनाम से अनीता भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, तो अनीता जी को हम कहेंगे धन्यवाद। पूनम जी आज से मार्त डंकीवेल पूनम चून करने के लिए, और लिस का शारदा डंकीवेल धन्यवाद चून करने के लिए। और आप मजा ले रहे हैं देवानंद साहब जी के नगमाओं जो पेश हो रहे हैं हियर ऑन यूआर, तो आप मजा लें क्योंकि और भी खूबसूरत गाने आने वाले हैं। प्रोग्राम जो है मेरे प्यारे सुनने वालों आज फाइनल एडिशन है देव साहब जी का, और रात्रि में 9 बजे तक प्रोग्राम हम सजाने वाले हैं हमेशा की तरह। अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों महल, फिल्म का नाम है महल, और महल जो है 1969 का है, इतना पॉपुलर है ये नगमा कि अभी अगर चले तो लोग दीवाने हो जाएं। गीत जो आनंद बख्शी जी ने लिखा है और जो किशोर कुमार हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी आनंद जी के साज और संगीत पर, कि आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने।

आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, और बातों बातों में हम तुम, या पहले आंखों से प्यार होता है। ये सीत मकार, ये फिंत मकार लोग, वो आंखों के बाद है। उसके बाद आप कुछ बोलना चाहेंगे, वो भी कुछ बोलेंगे। मार दरिस आल अन हुनुमिरात रेस आल नॉट रेस, इन गफाल कुछ हो रहा है, दिल के ओर जा रहा है कुछ। अब आप बात करेंगे उसे, मिस्किन ही सन हेल मोई गज़िख मोई ओग, लेकिन फ्रॉग स्टेम ऑफ अ स्लेक्ट आदम, या दन देंक यू को toch liever niet. तू जाने तो, मगर बात से भी आगे बात बढ़ सकते हैं कि प्रेम के बात हो रहे हैं, और प्रेम प्यार की बात इस तरह से हो रहे हैं। Dat het allemaal nog steeds mooi is. Ja, dan gaat het wel धीरे धीरे naar die deal, toch? वो आंखों और जुबान की जो बातें हैं, अगर वो दिल के ओर जाकर उस दिल को दिल भी सुंदर इस, जब तक वो धड़केगा हम जिएंगे, और अगर रुक गया दन से वकलार, तो उसे संभालना नीति दरें मखदारें। वह हेल्प फॉर मेंस ओवर द हिल स्नेल फॉर लिफ्ट एंड दैट इज ओके नहीं खुद। Maar als het oké is, dan is het oké. Doe je aan het toch. Je hebt Kishore Kumar en Nightingale Asha Ji. Anand Bakshi Ji, Kalikha Hoa Geet. Popular song, Amar Sangeet hai ye. Aur Kalyan Ji Anand Ji the Sangeetkar. Film Mahal ka nagma. Aur Mahal, mere pyare suno walo, ek film 1969 ka hai, 1969. Shankar Mukherjee ka direct kya hua. और देव साहब जी और आशा परेख का एक फिल्म, जिसमें सुधीर भी है, देवत साहब जी, अभि भट्टाचार्य, फरीदा जल्लाल, सापुरु साहब जी और रजन अक्सर। इखायो या युली अलमाओ मी नहीं मना रत औत नुमर वातिक है फन देव साहब, इनकी सबसे पुराने पिक्चराइज किया गया नगमा, हम उसकी ओर आपको ले चलते हैं। धनवासिक सीकर नोहनीत खबोर और सीकर वे इतनी तेकवासी नीते हैं सिंद प्लेनिंग निक्स निक्स नोख स्टर्क नोख। मैं ऑटिस हादे तुन नोखें किंदर En we zijn met heel veel. En geloof me, heel veel. Tomine Pierre is een film kan naam is Ziddi. Or Ziddi jo hai film 1948 ka 1948. Or ye film ka ek romantic song hum nikaal rahe hain. Nakshap Jarchwi ji ka likha hua geet. Je ken ik niet. Maar Nakshap ji ने जो गीत लिखा है, खिमचंद प्रकाश जी का साज और संगीत पर मिलकर गीत गाएंगे मेलोडी क्वीन लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार। कि ये कौन आया रे, पेश करता हूं ये पुराना ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिद्दी।

ये कौन आया रे, पुराने गीत सबसे जब से हम प्रोग्राम सजा रहे हैं देवानंद साहब जी का, तो ये नगमा रोमांटिक सॉन्ग, आवाजें तो किशोर कुमार और लता जी का था, और लिखने वाले या डिकेनिक सेल्फ नीत नक्षप जार्चवी और खेमचंद प्रकाश जी को भी या डिकेनिक उकनीत तमेंस केपमदार नोइट इन फरदीप्त, लेकिन खूबसूरत गीत थे, अल्फाजे बहुत खूबसूरत थे और गीत काफी रोमांटिक थे। अलेन ये कनवेल सीन दत्तेना दात नो नुमरिस ये कन तो कोर जिद्दी फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनो वालों, 1948 का मूवी है 1948, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर शहीद लतीफ साहब जी है और देवानंद साहब जी और कमिनी कौशल का एक फिल्म। कमिनी कौशल फाक मुदर रोल स्पिल्स है और खास करके क्या नाम है भरत मनोज कुमार के मूवीज में कमिनी कौशल माँ के रोल हमेशा अदा किया करते थे। चंदा भी है ये मूवी में मेरे प्यारे सुनो वालों, कुलदीप साहब जी, प्राण साहब जी, प्रतिमा देवी और इंदु शिवराज। हमारे प्रिय स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी, आज सुतमीर टंकीवाल आपके ऐप के लिए, एंजॉय यू आर एंजॉय बैक टू द फ्यूचर एंड एंजॉय द एवरग्रीन सॉन्ग्स ऑफ द एवरग्रीन एक्टर देवानंद साहब जी। ले चलता हूं 48 से 67 मेरे प्यारे सुनने वालों, 1967 फिल्म का नाम जवलतीफ, और जवलतीफ से निकालेंगे मशहूर नगमा मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ। वंस अगेन किशोर कुमार, संगीतकार अब की बार सचिन देव बर्मन, एस दे बर्मन, और आप सुनेंगे ये नगमा, ये दिल ना होता बेचारा।

या ये दिल ना होता बेचारा और कदम ना होते हमारा आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। किशोर कुमार मेरे प्यारे सुनने वालों, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज और मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ गीत किशोर जी ने गाकर सुनाए हैं, और वो भी एस दे बर्मन सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर। 1967 नी हतिन सेवनन सेसख का फिल्म जबल तीफ से हमने नगमा को निकाले। ये खूबसूरत पॉपुलर मूवी देवानंद साहब जी ने प्रोड्यूस किया है, एक्ट किया है, और डायरेक्टर है इनके छोटे भाई जो एक ग्रेट डायरेक्टर है, ना सिर्फ डायरेक्टर एक्टर भी है, गोल्डी आनंद ऑफ ट्वेल्व विजय आनंद जी। देवानंद ने ये मूवी में काम किया है द ग्रेट अशोक कुमार के साथ, तनुजा, विजयंतीमाला हेलन, सचिन पिलगांवकर, अंजू महेंद्रू, फड़ियल मनमोहन, नजीर हुसैन सापरू साहब जी, प्रतिमा देवी, जगदीश राज और कौन है, प्रेम कुमार भी है और आनंद कुमार। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है और देवानंद साहब जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं। आज फाइनल एडिशन है बैक टू द फ्यूचर में, और इन पर पिक्चराइज किया गया नगमा लगातार कुछ हफ्तों से हम आप तक पेश कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत नगमाएं इन पर पिक्चराइज किया गया है, जैसे ये रोमांटिक सॉन्ग जो हम चलाने जा रहे हैं। आपको मालूम रहे कि मैं आपका साथ दूंगा हमेशा की तरह 9 बजे तक। अब की बार दादा हेमंत कुमार जी का एक नगमा लता जी के साथ मिलकर गाएंगे एक रोमांटिक सॉन्ग, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, और वो भी शंकर और जैकसन की साज और संगीत पर। पुराने मूवी फिल्म पतिता से हम नगमा निकालेंगे। ये गीत इतनी पॉपुलर है कि आज भी अगर गाया जाएगा तो आप पसंद करेंगे। पतिता फिल्म 1953 का है, नीहत इंद्रियन फैफ्त, दादा हेमंत कुमार जी और लता जी को पेश कर रहा हूं, हीर ऑन यू आर।

याद किया दिल ने कहा हो तुम और ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, डाटा हेमंत कुमार जी और मेलोडी क्वीन लता जी की आवाजें, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं, शंकर जय किशन के साज और संगीत पर फिल्म का नाम पतिता। मेरे प्यारे सुनने वालों, पतिता 1953 का मूवी है, निखतिन द्रियन फेफ्ट और अमैया चक्रवर्ती जी ने डायरेक्ट किया है। देवानंद उषा किरण का एक फिल्म जिसमें आगा साहब जी भी है, इंदु शिवराज, ललिता पवार। अमस्टरडम में माइस भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं एंड माइस इज न्यू आनंद वेरिक, तो दिल लगाकर काम करना, नीड टू फील इन स्पन माइस अंडर्स टू पसीना पसीना हो जाइए। नो थैंक यू वेल अरबेज फिटामिना आप तक पेश कर रहा हूँ माइस, एंजॉय। मेरे प्यारे सुनो, अगले गीत किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे एक नगमा फ्रॉम द मूवी पेइंग गेस्ट। मेरे प्यारे सुनो वालों, पेइंग गेस्ट 1957 का मूवी है, 1957, मूवी फिल्म ब्यूटीफुल मूवीज, तमाम नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है और ये गीत जो है ऊ निगाहें मस्ताने और देख समा है सुहाना, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, किशोर कुमार आशा जी और वो भी एस डी बर्मन की साज और संगीत पर पेश करता हूँ।

0: मस्ताना,
1: ओ निगाहें मस्ताना और देख समा है सुहाना। नाइटिंगेल आशा जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। एस डी बर्मन की साज और संगीत पर 1957 का फिल्म का फिल्म पिंग गैस से हमने नगमा को निकाले। सुबोध मुखर्जी मूवी का डायरेक्टर मैं देखता हूँ। मेरे प्यारे सुनो देवानंद साहब जी और नूतन सुबह खोटे का एक ब्यूटीफुल मूवी, एक मोई फिल्म, और मैं ये मूवी हाल ही में जरूर अगर मौका मौका जब मिलेंगे तो हम देखेंगे। मेरे प्यारे सुनो अब वक्त आ गया कि मैं दो आखिरी नगमाएं पेश करूं। अभी से हम आप सभी से आज्ञा लेंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से हमने प्रोग्राम देवानंद साहब जी का सजाए हैं बनाए हैं आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। अगले हफ्ते एक नया कलाकार का प्रोग्राम हम सजाएंगे कुछ हफ्तों के लिए। पहला मैं दो गीत चलाऊंगा और मेरे प्यारे सुनो पहला गीत फ्रॉम द मूवी छुपा रुस्तम किशोर कुमार का एक नगमा नीरज जो लिखे हैं और जिसका संगीतकार है सचिन देव बर्मन। एक फिल्म जो देवानंद ने प्रोड्यूस और एक्ट किया है हेमा मालिनी के साथ और विजय आनंद गोल्डी आनंद डायरेक्टर जो है, और विजय आनंद ने ये मूवी में भी काम किया है विद बिंदु और अजीत प्राण साहब जी। और उसके बाद में एक आखिरी गीत दादा है मन कुमार जी की आवाज में हमारे प्रिय सहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ और वो भी एस डी बर्मन की साज और संगीत पर फ्रॉम द मूवी हाउस नंबर 44 1955 का मूवी। ये भी देवानंद का प्रोड्यूस किया हुआ मूवी है और देवानंद ने कल्पना कार्तिक के साथ मूवी में काम किया है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे सुनो कल रात्रि को। आज के लिए आ गया, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।
2: बाय। सुर पकड़ के

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: मुकेश जी की आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज़ की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा, ईमानदार, भोला भला आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

0: ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: जब तन पे तरंग रुपया बिखरती है, वहां रंग अपना जमाता है गाना। धीरे धीरे वो वक्त आया मिलन का, जहां शर्म पर्दा हटाता है गाना। तो क्या हुआ,

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौड़ खाती है। और हाँ तू मांगे हैगा wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ah, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
1: You are, you are, you are.

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।